0: घंटे काम किए हैं पूरे दिन में।
1: यू वर्क फॉर 8 आवर्स?
0: यस, 8 आवर्स।
2: डू यू एवर गेट टायर्ड?
1: थकते नहीं हो?
0: नो सर, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड न्यू जनरेशन।
1: ही सेइंग आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फ्रॉम द न्यू जनरेशन।
3: That new generation is what's driving India's growing economy. But for this economic momentum to be sustained, everybody needs to feel the gains, from Dineg all the way to the night schools. Coming up tomorrow, then, what manufacturing means for this country, and specifically for its women.